प्रसन्ते निस्त्रा ते अन्ते निफि ओवि शेरे न अपि मार्तिरो शेरे पे गे ने ओ शेरे पि अस्लो फोर स्पेशल सिप उरो गे